0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: मेरी जिंदगी का तुझसे

ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया तो उनके आमाल जाए हो गए और हम कयामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे।

0: और मैं अपने बाद अपने भाई बंधुओं से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा।
1: यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब वजअलहु रब्बी रदिया।
0: जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और ऐ मेरे परवरदिगार उसको खुश अतवार बनाइयो।
1: या

उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं।

0: तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी उसका कालिब जिसकी आवाज गाय की सी थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं।
1: अफला يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا।
0: क्या ये लोग नहीं देखते कि वो इनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है।
1: वला قد

0: मैं
1: तो खुदा जो सच्चा बादशाह है, आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने के लिए जल्दी न किया करो, और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे

0: और ज्यादा इल्म दे।
1: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا
0: और हमने पहले आदम से अहद लिया था मगर वो उसे भूल गए और हमने उनमें सब्र सबात न देखा।
1: وَإِذْ

तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आज भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बहूं जो हमें की जिंदगी का समरह दे और ऐसी बात चाहत कि कभी जायल ना हो।

0: और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता।
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح

बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह तहमीद किया करो, और रात की सात अव्वलीन में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन की अतराफ यानी दोपहर के करीब जोहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ।

0: सरकार। आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूएसपी की दुनिया FM 92.6।
1: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वाज दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: ایک نیا انداز ایک نئی سوچ एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है यूसीपी की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए
5: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज, दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: Halifax University Studios, where knowledge is empowerment. This is Match the Point 6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: Assalamu alaikum. This is Muhammad Zainul Abidin from Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Central Punjab, Lahore.
4: And this is Dr. Gulrez Ahmed from Mechanical Engineering Department. I am an associate professor over there.
3: Today, we'll be talking about outcome-based education and why it's important all over the world and why it's being implemented in different universities in Pakistan as well. And our guest speaker, Dr. Gulrez Ahmed, will be explaining about outcome-based education and its different modules and what are actually the ongoings in this particular field.
4: Right. So we will start with the OBE, which is known as outcome-based education. In my opinion, in Pakistan, students are being taught curriculum and the curriculum is not being applied so that their skills are managed and their skills have to be like assessed. So it is better to have a system in which they can be assessed, as well as there is an analysis at the end that have they achieved those skills.
3: Dr. Sir, please can you explain how outcome-based education is different from traditional education process?
4: So the traditional is basically teacher is giving input to the students and they are assessing through the assessments. And if we talk about outcome-based education, it is basically student-centered and it is not the typical thing. And in this, I think it is the problem with our usual system in which when we are doing primary and secondary education over there, these are not being applied correctly. And I think we should improve the system of our primary as well as secondary education. And in order to do that, we should have some rubrics to follow. And those rubrics will basically assess whether the students have achieved something out of their education. Something means the skills.
3: Okay, so as you have told, to my understanding, it means that not just relying on cramming different, chapters or stubbing down different kind of, knowledge down your throats. It's basically, it depends on the level of skill you achieve. Mm-hmm. The students are, outcome-based education is basically centered around what kind of skill and what level of skill is basically achieved.
4: Yes.
3: Okay, thank you so much, Dr. Sir. Okay, so there is also an International Engineering Alliance. Can you tell us about that, sir?
4: There are like different organizations around the world which have helped us as engineers to basically apply outcome-based education. To my knowledge, like there are four educational accords. One is Washington Accord. The second is Sydney Accord, Dublin Accord, as well as Abbott. So Abbott and Washington Accord are the main ones. And we as engineers in Pakistan, the Pakistan Engineering Council has MOUs with Washington Accord, and they have applied Washington Accord in its true spirit.
3: अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि जो OBE है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ये हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोसेस है जो साल साल से चलता आ रहा है, उससे किस तरह डिफरेंट है ये
4: OBE सिस्टम? अगर मैं इसकी बात करूं तो वो बेसिकली क्या करता है कि असेसमेंट्स तो होनी है, जो हमारे पास टेस्ट्स क्विजेस वगैरह होने हैं स्टूडेंट्स के, और जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं, वो तो उसी ट्रेडिशनल उसके अंदर चल रहा होता है। बट OBE सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने उन असेसमेंट्स को मैप करते हैं, कोर्सेज को मैप करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कुछ आउटकम्स के साथ, कुछ स्किल्स के साथ, ताकि हम उन्हें असेस कर सकें। असेस किस तरह करेंगे? बेसिकली हम बताएंगे कि स्टूडेंट ने ब्लड से एक असाइनमेंट की है, तो उस असाइनमेंट में उसने क्या अचीव किया है, उसको हमने किस तरह असेस किया, उसको उसकी असेसमेंट का लेवल क्या था, और उस असेसमेंट लेवल पे उसने उस स्किल को अचीव किया है या नहीं किया। ये हमारा बेसिकली सिस्टम है जिसको हम OBE कहते हैं।
3: चलिए, इट्स गुड। अच्छा, अब जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि एक इंटरनेशनल अलायंस बनी है, ठीक है, इंजीनियरिंग की फील्ड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो, कि उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं OBE के ऊपर।
4: OBE के अंदर बेसिकली यहाँ पे इफ़ आई टॉक अबाउट इट, जो अलायंसेज हैं वो मेरे पास चार किस्म की हैं, जो चार मेजर बॉडीज हैं अराउंड द वर्ल्ड जो ये काम कर रही हैं, जो इंजीनियरिंग को हेल्प आउट कर रही हैं। नॉट जस्ट इंजीनियरिंग को देखते हुए जो इंजीनियरिंग के अंदर हमने ये अलायंसेज की हैं, उन अलायंसेज को देखते हुए बाकी भी अदर डिसिप्लिनस भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर मैं इनकी अलायंसेज की बात करूँ तो देर आर फोर मेजर अलायंसेज जिसके अंदर वॉशिंगटन अकॉर्ड है, सिडनी अकॉर्ड है, डुबलिन अकॉर्ड है और एबट है। वॉशिंगटन अकॉर्ड को इंजीनियरिंग काउंसिल इज फॉलोइंग इन इट्स ट्रू स्पिरिट। और अगर मैं इसकी बात करूं कि वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या है, वो बेसिकली अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस फर्दर करेंगे कि वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या है, तो वो इज़ वन ऑफ द सिस्टम्स जिसके साथ हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने MOUs साइन किए हुए हैं, और उन MOUs को बेसिकली वहाँ से टीम आती है और उसको असेस करती है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोसेसेस हैं उनको देखती है।
3: ओके, सो रोड साहब, इसका हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लेट्स सपोज इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एजुकेशन वहाँ से लेते हैं जहाँ वॉशिंगटन अकॉर्ड और PEC एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हमारा तीनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ऑल थ्री प्रोग्राम्स आर एक्चुअली एक्रेडिटेड बाय PEC वॉशिंगटन अकॉर्ड के ऊपर, उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में जो PEC से रिकॉग्नाइज नहीं है या वॉशिंगटन अकॉर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है? इसके ऊपर UCP के अंदर स्टूडेंट्स को आने का क्या मेजर बेनिफिट होगा आपके ख्याल में?
4: देखिए, मैं दुनिया की अगर बात करूँ ना, तो हर अगर आप यूनिवर्सिटी की किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी कोर्स उठा के देखें, तो उसके अंदर ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अचीव दिस। वो ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्टूडेंट्स की आउटकम्स क्या हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस सिस्टम को अडॉप्ट इंजीनियरिंग काउंसिल ने थोड़ा सा लेट किया है, 2014 के अंदर किया है, बट ओवरऑल दुनिया के अंदर इसको जो है ना सिस्टम को अडॉप्ट बहुत पहले से कर दिया हुआ था। तो इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का फ़ायदा स्टूडेंट्स को ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दे कैन कम्पीट विद एनी other student and they do not have to get re-accredited from any other organization. Let's say if they move to US or Australia ne to even pichle dino ke andar ye kaam bhi kiya tha ke kyunki we were accredited with the वॉशिंगटन अकॉर्ड, तो हम उस अकॉर्ड की वजह से उनको वीज़ाज दे रहे थे जिसके अंदर 476 कैटेगरी थी, जो यहाँ से इंजीनियर डायरेक्ट अप्लाई करते थे और वहाँ पे डायरेक्टली जॉब्स के लिए एलिजिबल थे। अब क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी सैचुरेशन हुई है, तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा डिले कर दिया उसको, यानी कि ऑब्वियसली बहुत सारी जो कोविड के बाद स्टूडेंट्स वहाँ पे मूव किए हैं, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। बट ऑब्वियसली इस एक्रेडिटेशन के बाद वो हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स को कि उनको बाहर के एग्जाम्स नहीं देने पड़ते और डायरेक्टली वो जॉब मार्केट के लिए सूटेबल हो जाते हैं।
3: कीप लिसनिंग, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक एट FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: जी वेलकम बैक। सो डॉक्टर साहब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये है कि भाई अगर आप पाकिस्तान की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन हासिल करते हैं जो PEC आयन वाशिंगटन अकॉर्ड पे एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के स्टेटस अचीव कर लेते हैं। ठीक है, एंड सर अब ये पता करना है कि एक्चुअली ये जो एक्रेडिटेशन है इसका प्रोसेस कैसे होता है, या इसका क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, काइंडली इसका बता सकते हैं।
2: बेसिकली अगर मैं टॉप टू बॉटम अगर बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपना एक विजन इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसका कोई विजन है, उसने जितने स्टूडेंट्स या जितनी फैकल्टीज को भी यहाँ पे अकोमोडेट करना है, जितने को भी टीच करना है स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने एक विजन बनाना है। फिर उसका एक मिशन भी होता है यूनिवर्सिटी का। मिशन किस चीज़ का है वो बेसिकली डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट, जैसे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का अपना मिशन है, इसी तरह अगर मैं FOST की बात करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका अपना मिशन है सारी, यानी कि अगर मैं UCP के हर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो उन्होंने अपना एक मिशन बनाया हुआ है कि हम जो स्टूडेंट्स को टीच करेंगे they will be able to be a good engineer as well as scientifically sound and they have innovative ideas at the end of that degree. तो अब अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करूं तो आप विजन अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर अपना मिशन इंट्रोड्यूस करते हैं, मिशन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद जो है आप ये अपने डिपार्टमेंट, जो ऑब्वियसली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स ने अलहदा अलहदा अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने कि मैं ये इस किस्म का इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं सिविल इंजीनियर या फॉर दैट सेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ। तो जब ये चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं, आप साउंड होते हैं, आपको पता होता है कि जी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपकी डिग्री के, जो आप डिग्री ऑफर कर रहे हैं, तब उसके बाद आप बेसिकली ये जो वॉशिंगटन अकॉर्ड हम फॉलो कर रहे हैं उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो लर्निंग आउटकम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर होने चाहिए, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बताते हैं कि उनके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अगर मैं जनरली जेनेरिकली बात करूं तो उन एट्रीब्यूट्स के अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज फर्स्ट एट्रीब्यूट, देन आफ्टर दैट हम ये कहेंगे जी प्रॉब्लम एनालिसिस आना चाहिए, उनको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आनी चाहिए, पहले नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम एनालिसिस होगा, देन आफ्टर दैट they will should be able to design something and develop solutions, because obviously there are like problems that are occurring in our system, or un system ke andar jaise abhi agar main baat karun to hamare paas bahut sare aise problems hain jinko address karna baki hai on Pakistan level as well as internationally, bahut sari aisi problems hain jinko address nahi kiya hua, to ab development aani chahiye unko as engineers, they should be innovators and they should be able to investigate which is next attribute, के उनको investigate करना आना चाहिए कि कहाँ पे problem आ रही है, उनको modern tools use करने आने चाहिए, which is the next one. अगर modern tools की बात करूँ तो अब अगर मैं एक engineer बना रहा हूँ तो engineer must be sound in applying problems on a simulation, like they should be able to apply simulations, they should be able to have sound knowledge of all the things, all the applications that are available.
1: सर चले मॉडर्न टूल्स की अगर बात करें, आपने बताई है तो हम UCP के अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में, तो क्या ये हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं मॉडर्न टूल्स के लिहाज से? ठीक है, इस तरह के कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ से बेनिफिट कर सकते हैं, जिनसे अपने स्टडीज के अंदर और अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लेवल पे लेके जाने के लिए?
2: देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास टूल्स तो हमारे पास सारे हैं जो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडर्न टूल्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, और अगर कोई नई ऐसी इनोवेटिव मशीनरी है जो ज़रूरी है तो हमारा डिपार्टमेंट तो उसको फौरन एक्वायर करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमने 3D प्रिंटर्स एक्वायर किए हैं और वो मॉडर्न है बेसिकली, किस कभी स्टूडेंट्स ने कभी सुना भी नहीं होता आजकल, अभी इतने वो आम नहीं हुए, दे आर नॉट दैट ईजी टू गेट as well, because obviously government ki thodi si restrictions hain, but as an educational institute we are able to get those things aur unko phir hands on practice uske upar karwate hain. Phir jaise ki softwares bahut sare hain jiske andar agar main softwares ki baat karun, on mechanical engineering solid works ke upar hum kaam karwa rahe hain, hum inko jo hai programming languages bahut sari apply karwa rahe hain, python ho gayi aur jo ki machine learning ke andar aajkal artificial intelligence data science ke andar bahut zyada use ho rahi hai, to hum usko bhi use kar rahe hain. To UCP at its level agar har department ki baat karein to wahan pe har kism ke modern tools use kiye ja rahe hain. To main mere khayal mein ye zaruri bhi hai kyunki obviously jo bachcha aa raha hai jis system se aa raha hai usko aajkal he is well informed ke kya cheezein ho rahi hain, kis taraf duniya ja rahi hai. Aur abhi agar main baat karun waise apni wo mobile ki screen se sab kuch dekh sakta hai. He has so much knowledge ke main expect karta hu ke in the near future agar hum in modern tools ko apply na karte jaye, sath sath innovate na karte jaye, to maybe it's possible ke students aapko aake bata rahe ho ke sir ye jo hai ye cheez to maine yahan pe YouTube ke upar dekhi hui hai ya maine iski video dekhi thi ya कुछ भी अप्लाई किया है, तो इट इज पॉसिबल कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ना कर सके, वो गाइड कर रहे हो अपने टीचर्स को.
1: तो उसका मतलब है यूसीपी इज वेल इक्विप्ड विद दोस मॉडर्न टूल्स और ताकि हमारे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकें, उनसे अपना वो स्किल का लेवल बढ़ा सकें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बराबर आने के लिए.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: राइट सर, प्लीज कैरी ऑन एक्सप्लेनिंग द एट्रीब्यूट्स.
2: अगर हाँ या ये तो पांच एट्रीब्यूट्स की मैंने बात की थी. फिर इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी बहुत

0: effectively, which is the next attribute, जिसके अंदर उसकी communication बहुत जरूरी है. अगर मैं बात करूँ कि हम अगर लेट से एक स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास, तो वो इतने ज़्यादा उसने कभी कम्युनिकेट नहीं किया होता डिफरेंट फोरम्स के ऊपर. कम्युनिकेशन के बाद ये है कि ही इज़ नॉट इक्विप्ड विद प्रेजेंटेशंस. कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो डिबेटिंग सोसाइटीज़ के अंदर जाते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, बट अगर मैं हर इंजीनियर की बात करूँ तो ही मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. तो उसको भी एड्रेस कर रहा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जिसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन लेवल को, उसकी राइटिंग लेवल्स को उस जगह पे लेके आ रहा है जो कि एक इंजीनियर से रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करूं तो इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. बेसिकली इंडिविजुअल जो है, स्टूडेंट्स इंडिविजुअली पढ़ के आ रहे होते हैं, टीम्स के अंदर उन्होंने कभी काम नहीं किया होता, तो ये एट्रीब्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें पता हो कि मैं अगर आ रहा हूँ किसी बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से, तो मुझे कल को किसी जॉब के लिए जाना है इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री के अंदर तो डिफरेंट पीपल आर डूइंग थिंग्स. वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम वहाँ पे कर रहे होंगे उसके साथ मिलके ही उसने काम करना, तो ही शुड हैव दिस नॉलेज कि मैंने टीम के अंदर किस तरह काम करना है. अगर मैंने टीम को लीड करना तो उसको किस तरह लीड करना है. तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी है, जिसके अंदर हम मैनेजमेंट सिखाते हैं बच्चे को, मैनेजेरियल स्किल्स उसके अंदर डिवेलप करते हैं कि ही मस्ट बी एबल टू मैनेज थिंग्स, ही मस्ट बी एबल टू मैनेज स्टफ लाइक ह्यूमंस को मैनेज किस तरह करना है.
1: Okay, listeners, keep listening. We'll be right back after a short musical break at FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स. ओके डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं कि ओबीई डेवलपमेंट के अंदर क्या लेवल्स इन्वॉल्व्ड हैं, किस तरह स्टूडेंट्स वो स्किल गेन करते हैं और किस तरह हम जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाने का क्राइटेरिया सेट करते हैं?
4: बेसिकली अभी हम लेवल्स की बात कर रहे थे, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं. हर कोर्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि यार इस कोर्स के बाद स्टूडेंट जो है ही मस्ट बी एबल टू डू अ फ्यू थिंग्स इंडिपेंडेंटली और उसके ये स्किल्स डेवलप हो चुके हों इस कोर्स को पढ़ने के बाद. तो वो कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं और उस कोर्स लर्निंग आउटकम्स को आगे फर्दर हम मैप करते हैं किसके साथ, जो हमने मैंने अभी आपको प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स बताए हैं. तो अब अगर ओवरऑल बात करूं मैं ओबीई सिस्टम की, तो ये अगर ऊपर से स्टार्ट करूं तो मेरे पास विजन है, फिर मिशन है, विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मिशन ऑफ द फैकल्टी, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स जो है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है इनकलकेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो है. फिर उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको 12 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स बताए हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स. तो अब हमारे पास अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो हमारे पास 40 डिफरेंट कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज को हम ओवर टाइम

0: पढ़ाते हैं और उसके अंदर एटलीस्ट 3 हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम्स पर कोर्स हों, तो 120 कोर्स लर्निंग आउटकम्स विच इज़ अ वे बिग थिंग, और एटलीस्ट हमारे पास 3 दफ़ा असेस भी उनको हमने करना है कोर्स के अंदर, और उनकी असेसमेंट किस तरह होगी, वो क्विजेस के थ्रू हो सकती है, वो टेस्ट्स के थ्रू, वो मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर हो सकती है, वो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर हो सकती है, प्रेजेंटेशंस के थ्रू हो सकती है, फिर लैब असाइनमेंट्स हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियर जो है वो थ्योरेटिकल इंजीनियर तो हम बनाते नहीं हैं, तो लैब्स के अंदर जो वो काम कर रहे होते हैं उसकी असेसमेंट भी हो रही होती है। तो कोर्स लर्निंग आउटकम्स के अंदर फिर हमने कोर्स के साथ तो हमने उनको मैप किया होता है, उसकी थ्योरी, उसकी एनालिटिकल स्किल्स हम कोर्स के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, बट उसके जो स्किल्स हैं वो लैब के अंदर वो डेवलप करता है, तो लैब के अलहदा से फिर हम डिफाइन करते हैं। अब अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली कोर्स के अंदर ये असेसमेंट्स की हैं चीज़ें, और जो लैब की असेसमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर होती है। उसके अंदर हम रूब्रिक्स बनाते हैं, रूब्रिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि यार अगर स्टूडेंट ने इस तरह का रिस्पांस दिया या इस तरह का स्किल एक मशीन को ऑन करने के, उसको वर्किंग पोजीशन के अंदर लाने के, और उसके अंदर जो एनालिसिस हमने डेवलप करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसके डिफरेंट वर्क एथिक्स हो सकते हैं। लेट्स से अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ तो हम डिफरेंट फ्लूइड्स के साथ डील कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट अगर आता है और वो फ्लूइड किसी भी लिक्विड को स्पिल कर देता है ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, तो उसके स्किल्स को हमने असेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हमने उस चीज़ को असेस नहीं किया प्रॉपरली कि ही डिड ही मैनेज दोज थिंग्स। अगर मैं दूसरी तरफ फ्लूइड से हट के बात करूं तो हमारे पास RAC की लैब है जिसके रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन कहते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन्वॉल्वड है, और वहाँ पे कहीं पे फायर हैजर्ड हो जाता है या कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव नॉलेज कि मैंने अब इसके साथ किस तरह डील करना है। तो अगर वो नॉलेज नहीं है स्टूडेंट के पास और उस लैब को उसने पास कर लिया है विथ फ्लाइंग कलर्स, तो इट इज़ यूजलेस, क्योंकि कल को उसने इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे होंगे, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हाउ ही इज़ एबल टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स, और अगर हमने वो चीज़ नहीं सिखाई, उसको इन चीज़ों का नहीं पता, तो उसको हमने किस तरह असेस किया था और उसको एक ए ग्रेड दिया था इन लैब, क्योंकि यूजली इससे पहले जब ये सिस्टम नहीं था तो इससे पहले जो लैब्स को पास करना बहुत आसान था, आपने एक लैब की कॉपी बनाई, उसके अंदर उसका एक छोटा सा वाइवा हो गया और उसको आपने असेस करके बता दिया। अब जो है हम उस लैब के अंदर जो असेसमेंट कर रहे हैं उसके अंदर 3 डोमेन्स के अंदर हम उनको स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, एक उसकी इफेक्टिव डोमेन है, एक उसकी साइकोमोटर डोमेन है, और एक उसकी कॉग्निटिव लेवल के ऊपर डोमेन है। कॉग्निटिव ये जो टर्म्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल्स है जो कि एक एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन गुजरा है, तो उसके अंदर बेसिकली ही हैज़ डिफाइंड डिफरेंट लेवल्स के जो हमारे पास स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के अंदर, वो कॉग्निटिव लेवल के हैं, यानी कि अगर वो पढ़ के अंडरस्टैंड करके उसको अप्लाई कर देता है, किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देता है, तो वो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उसके। दूसरी तरफ बात करूं तो साइकोमोटो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के, उन साइकोमोटो स्किल्स के अंदर अगर फर्दर इसके अंदर जाऊं तो साइकोमोटो स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं कि उसने मशीन को किस तरह ऑन किया, किस तरह उसको ऑपरेट किया, फिर आफ्टर परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड कि उसने उसी तरह मशीन को छोड़ दिया या उसको क्लीन किया, या उसके अंदर अगर कोई आउटलेट था, इलेक्ट्रिकल आउटलेट था, उसको स्विच ऑफ किया, उसने ऑपरेट एज सच क्या किया, उसके स्किल्स क्या थे, उसको एक्सपेरिमेंटल रिग को बनाने में उसके क्या एफिशिएंसी उसने उस अंदर अपनी पुट की, वो सारी चीज़ें उसके अंदर साइकोमोटो के अंदर उसके जो उसकी नॉलेज थी उसने करेक्टली उसको अप्लाई किया है कि नहीं किया, वो हम उसके अंदर चेक कर रहे होते हैं। अदर थिंग इज इफेक्टिव डोमेन। अगर मैं इफेक्टिव डोमेन की बात करूं तो वो लेट्स से अब एक स्टूडेंट काम कर रहा है डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ और वो स्टूडेंट्स के साथ किस तरह बिहेव करता है, उसकी मूवमेंट इन द लैब किस तरह की है, उसने किस तरह रिस्पॉन्ड किया डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो वो हम असेस उसके अंदर इफेक्टिव डोमेन के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं जो जिसको करने के बाद हम कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट हमने यहाँ पे किया है, जिसको हमने लेके आए हैं यहाँ पे, स्टूडेंट को इंजीनियर एक डिग्री दे रहे हैं, उसकी एक पहचान बना रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर ये इंजीनियर के अंदर नहीं होती, ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं होते, तो इट इज़ इन माय ओपिनियन यूजलेस। मैं अभी इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूसीपी के अंदर एफर्ट्स अभी हो रही हैं कि यूनिवर्सिटी वाइड इस चीज़ को अप्लाई किया जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज है, तो ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर फैकल्टी के अंदर उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उनको डिफाइन करना चाहिए, हर कोर्स के ऊपर उनकी कोई ना कोई आउटकम डिफाइन होनी चाहिए। इस सिलसिले में जो है मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल है। ऑब्वियसली हम एज एन इंजीनियर यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी एजुकेट करते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, और ऑब्वियसली हमें अगर 2014 से हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो हम इस वक्त भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, और ऑब्वियसली 11 इयर्स आफ्टर अप्लाइंग दिस एक्रेडिटेशन सिस्टम, तो उसके अंदर भी हमें लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली ये एक दिन में तो नहीं होगा स्टार्ट, तो हम जो है इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं ऑन डिफरेंट लेवल्स। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, हमें भी तकरीबन 2 साल जो है वो रिग्रस ट्रेनिंग हुई थी, तो अभी हम मैनेजमेंट के साथ मिल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एज अ होल, अगर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद वेरी गुड रैंकिंग एंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन पाकिस्तान, तो उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस सिस्टम के ऊपर जाएं।
1: डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन बताया ऑन OBE, वाशिंगटन एकॉर्ड, और जो एफर्ट्स UCP और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग UCP के अंदर कर रहा है अपने स्टूडेंट्स का लेवल इंटरनेशनल लेवल लेके जाने के लिए, ताकि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा अपने फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सके। ओके लिसनर्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलरेस, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमारे लिसनर्स को आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड वाशिंगटन एकॉर्ड पे, और जो एफर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब स्पेशली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कर रही है, ताकि आपके स्टूडेंट्स का लेवल जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, उनकी स्किल्स का भी और उनको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिल सके इंटरनेशनली भी और नेशनली भी।
0: बिल्कुल,
1: एंड थैंक यू सो मच लिसनर्स एज वेल कि आपने अपना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, एंड विल बी बैक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद अ न्यू गेस्ट। दिस इज मोहम्मद जैनुल आबिदीन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड आवर गेस्ट टुडे वर डॉक्टर गुलरेज अहमद, आल्सो फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।

0: जी बिल्कुल नबील भाई, अब जिस तरह की आप बात बता रहे हैं कि कैसेट का दौर था उस टाइम पे, और जिस तरीके से मुझे अच्छी तरह याद है कुछ गेमिंग बॉक्स हुआ करते थे जो कि अब वो जदीद होते होते होते बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं, बट उस टाइम पे वो गेमिंग कुछ बॉक्स ऐसे हुआ भी करते थे जहां पे आपने सिर्फ एक कैसेट को आपने वहां पे बटन करना है और उसके बाद के कुछ ग्राफिक्स और डिस्प्लेस आप सामने शो हो जाएंगे। मगर अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि तरक्की किस तरीके से जदीद होती जा रही है, किस तरीके से डिस्प्ले के टाइम में और कंप्यूटर्स में, सीपीयूज में और गेमिंग में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, वो ग्राफिक्स जो कि अब के शायद बच्चे को हम वो पिछले ग्राफिक्स कुछ दिखाएं तो उनको जरा से भी पसंद नहीं आएंगे, मगर आपके कुछ ऐसे ग्राफिक्स आ चुके हुए हैं जो कि आप बिल्कुल रियल लगते हैं। आपने वीआर की बात की तो देखा जा रहा है कि आजकल कुछ एक एलसीडी और कुछ एलईडी टाइप की कुछ चीज आ रही है, क्यूलिट कुछ चीज आ रही है जो कि 8K का डिस्प्ले रखती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर से भी आगे कुछ फ्यूचर की चीज देखने को मिल रही है हमें, जो कि पहले के दौर में हम बात करते हैं कुछ जिस तरह की भी हम आप जिक्र करेंगे आगे इसका जाके कि कुछ हर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, 120 हर्ट्स होते हैं, 16 हर्ट्स होते हैं जो कि डिस्प्ले को रिफ्रेश रेट कहते हैं और उनमें से डिस्प्ले को अच्छा बेहतरीन दिखाते हैं हमारे स्क्रीन पे। मगर जो आने वाली टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं इसमें 265 हर्ट्स देख रहे हैं हम, और 8 ना के 2K ना के 3K बल्कि 8K हम देख रहे हैं। आपको इस बारे में क्या कहना
1: है? जी आजम, ये बड़ी ही फैसिनेटिंग बात है, बड़ी एक इनोवेटिव बात है कि 265 हर्ट्स का जो है हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें या अभी रिसेंटली बात करें तो 120 हर्ट्स डिस्प्ले जब इंट्रोड्यूस कराया गया था तो उसका जितना एक स्मूथ इफेक्ट था और जितनी स्मूथ स्क्रीन हुआ करती थी तो वो बहुत हमें फैसिनेट की थी और हमने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है और बहुत अच्छी हो गई है, और अब कहाँ 265। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश रेट को यहाँ पर बताता चलूँ कि रिफ्रेश रेट होता क्या है। एक सेकेंड के अंदर स्क्रीन पर जो इमेज है वो जब दोबारा ड्रॉ कितनी दफ़ा ड्रॉ होती है उसको रिफ्रेश रेट कहा जाता है। 265 हर्ट्स का मतलब ये है कि 265 टाइम्स एक सेकेंड में है जो वो स्क्रीन है वो दोबारा स्क्रीन पर जो है वो ड्रॉ होती है या आती है, और हर्ट्स ऑब्वियसली एक यूनिट है जिसमें इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा ग्राफिक्स के हवाले से आपने बात की तो हम इसको थोड़ा सा मजीद बात करेंगे कि हार्डवेयर में इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है और ये तमाम चीज़ें एक ब्रेक के बाद। आप तब तक के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक को इंजॉय कीजिए, हम वापस आते हैं।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हों मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: जी वेलकम बैक लिसनर्स। अब हम दोबारा जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, डॉक्टर हसन हमारे साथ जो गेस्ट हैं, तो अभी हम अपने प्रोग्राम को दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो जैसे अभी एकेडेमिया ज्वाइन करने से पहले आपका एक बड़ा वास्ट आपके जो एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री के अंदर भी है, आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया हुआ है, तो आप इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों में क्योंकि काम कर चुके हैं, तो इस ताल्लुक को आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, ये दोनों शोबे जो है ना, चाहे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लें या फार्मास्यूटिकल एकेडेमिया ले लें, ये एक दूसरे के लिए मैं समझता हूँ कि लाजिम और मलजूम है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये इनके पास रॉ टैलेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स। जो इंडस्ट्री है वो एक अमली मैदान है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इंटर्नशिप्स हम ऑर्गेनाइज करवाएं बच्चों की, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोलैबोरेशन में लिखें और कोर्सेज अपडेट करें एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस, तो हमारे तलबा ज़्यादा कामयाब होंगे।
1: जी ठीक हो गया। तो आप अपने जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को एकेडेमिया में कैसे शामिल कर सकते हैं, ज़रा हमारे और मज़ीद स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बता दें, क्योंकि हमारे पास
2: जो स्टूडेंट

0: रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। तो ये सारी अमली मिसालें जब स्टूडेंट्स को दी जाएंगी तो उससे उनके जो नॉलेज है वो बेटर होगा और वो अच्छे तरीके से रियल टाइम जो हमारी इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। इसी तरह क्वालिटी ऑडिट एक बहुत बड़ा फील्ड है कि हम जब ऑडिट करवाते हैं, ख़ास तौर पर जब हम किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपनी इंडस्ट्री में बुलाते हैं और एक्रीडेशन के लिए अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें, हम टेस्टिंग करें, फिर उनकी वो ऑडिट पीरियोडिक ऑडिट्स करते हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज वाले, तो इन पे जब आप बात करते हैं, इनकी मिसालें देते हैं, तो एक किस्म का उनका नॉलेज भी बढ़ जाता है और उनको अमली मैदान में जो है वो फ़ायदा भी होता है। इससे तलबा को बेहतर अंदाज में समझ आती है कि इंडस्ट्री में असल काम होता कैसे है।
1: जी डॉक्टर हसन, तो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए हमारी यूथ जो है, स्पेशली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक हमारा जो डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो इनके स्टूडेंट्स के लिए या बाकी जो फार्मा के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में ये फार्मास्यूटिकल जो करियर है ये एक अच्छी च्वाइस है, एक अच्छा इंतखाब है? थोड़ा सा इस पर भी ज़रा रोशनी डालें।
0: देखिए, अगर हम बात करें स्कोप के हवाले से तो पाकिस्तान में इस टाइम पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 700 से 800 फार्मा कंपनीज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, यानी जिनके प्लांट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और इन्हें मैन पावर की ख़ास तौर पर बासलाहियत अफराद की ज़रूरत रहती है, ख़ास तौर पर क्वालिटी कंट्रोल। अब इनके अंदर डिफरेंट शोबा जाते हैं जैसे क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स और प्रोडक्शन, तो इनमें ज़रूरत रहती है इनको अच्छे हुनरमंद अफराद की, तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा बूमिंग प्रोफेशन इस लिहाज से ये बन जाता है।
1: फार्मास्यूटिकल साइंसेज में कौन से ऐसे शोबा जाते हैं जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस का जो पोटेंशियल या स्कोप ज़्यादा होता है?
0: एक्चुअली हमारे चार फील्ड्स हैं, फार्माकोग्नोसी, क्लिनिकल फार्मेसी जिसे हम फार्मेसी प्रैक्टिस भी कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी। तो फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, फार्माको विजिलेंस और क्वालिटी एश्योरेंस, ऐसे ये हैं शोभा जात हैं जो कि लोकली जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च में आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये सारे शोभा जात जो हैं इनमें अगर किसी का इंटरेस्ट है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी ये जो हैं बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है इनमें।
1: तो जब भी हम कुछ भी करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली आपको पता है कि कुछ हमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अभी जो करंट सिनेरियोस जो भी चल रहे हैं उसके हवाले से?
0: देखिए, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं ड्रैप की बनने के बाद, लेकिन फिर भी हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसकी पेचीदगियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे तहकीक के लिए फंडिंग की कमी है, हमारे पास तरबियत याफ्ता अफरादी कुवत नहीं है, खाम माल की दरामद में मसाइल हैं, जैसे आपको पता है कि इम्पोर्ट वैसे ही जो है वो मसाइल का शिकार है हमारी। ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन इनमें ही तरक्की के मौके भी मौजूद हैं। जैसे हम लोकली अगर इन चीज़ों को प्रमोट करें तो हम इन सारी मसाइल पर काबू पा सकते हैं और जो है हम तरक्की की राह पर जो है वो चल सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी करंट जो सिनेरियोज हैं इसके अंदर हमारे यूथ जो है, स्पेशली जैसे हमारी यूसीपी के हैं या डिफरेंट एकेडेमिया के जो लोग हैं या यूथ है हमारी, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं इन चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए?
0: बेसिकली हम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तहकीक, तरबियत और इंडस्ट्री से तावन, यानी हम जिसको हम इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी लिंकेजेस कह सकते हैं, दोनों के दरमियान कोलेबोरेशन होगा तो बेहतर मसाइल का हल जो है वो निकलेगा।
1: जी डॉक्टर हसन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा एक सेशन चल रहा है और आई होप सो कि हमारी जो फार्मा के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी जनरेशन है, वो काफ़ी मुस्तफीद हो रही होगी, हमारे सामीन। तो अभी टाइम हो रहा है एक शॉर्ट सी ब्रेक का, तो अभी हम ब्रेक पे जाते हैं और सामीन आप सुनते रहे 92.6 UCB की दुनिया। तो अभी हम वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है UCP की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

खुद से भी मिला करें, सर उठा के चला करें। खुदा के तरीके हम नहीं समझ सकते, हम उससे क्या गिला करें। दुनिया संग दिल बनती मेरी दुश्मन, हम कम अज कम खुद से ही सुला करें। कम बोला करें, ज्यादा सुना करें, रब देता है माफी फिर गुनाह करें। ये ताकत ठिकाने बदल सकती, कलम की ताकत तख्त भी पलट देती। लिखारी जान लेवा हूँ पर लिखाई ही रोज़ अब

फैक्स है ये फ्लेक्स नहीं, मुझे गालिब जैसा लिखने का फैज नहीं। वो हबीब है मेरे तो मुझसे दूर क्यों, वो हरीफ है मेरे तो उनकी खैर नहीं। आजकल भेजे मुझे टेक्स्ट अप व्हाट्सएप पे, दे वांट टू नो के व्हाट्स अप। मेरी जिंदगी कितनों की हसरत, मैं मिसाल मेरा नाम लेते मसलन। दिल फेंक के ना दिल तोड़, बिलबोर्ड पे अब दिखे शक्ल इनको। मेरा बैंक बैलेंस लगता था पिन कोड, अब सफर देख सिर्फ सिफर गिनतू। आई बिलोंग हियर, जाने का मूड नहीं है। हेडलाइनिज्म तेरी कोई न्यूज नहीं है, क्या वो सुनते पर करते महसूस नहीं है। वादे टूटे पर टूटे हैं, सूल नहीं है।

सुल गए कटे मेरे पर, फिर भी जाने कैसे उड़ते, मुझे उड़ने दे, टूटे जो दिल हुआ जुड़ने दे, इन आंखों को खुशियों से भरने दे, अल्फाज मेरे दिल में उतरने दे, मंजिल तो खुश हो ठहरने पे, ये घर मेरा जड़ को ना मरने दे, उभरेंगे सूरज ये ढलने दे, वक्त लगे खुद को बदलने में।

0: वही।
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

गया नहीं अक से मैं छुपसा गया हूँ चकसा मैं सबसा बनता ही जाऊँ ऐसे ही कैसे मैं धसता ही जाऊँ ऐसे ही कैसे मैं मरता ही जाऊँ बिखरता ही जाऊँ बिखरता ही जाऊँ बिखरता ही जाऊँ बिखरता ही जाऊँ।

मेरी मदद मुझे दे दो, मेरी कदर सारी हदें करूं खत्म, मैं पकाऊं अपने हदफ में तो पूरी करूं कसर, मुझे अपनी बात का असर, मुझे मालूम मेरे अजम, मैंने खाई उसे कसम, मैं नहीं हूंगा मध्यम, मैं नहीं हूंगा मध्यम, मैं नहीं हूंगा मध्यम, मैं नहीं हूंगा मध्यम।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।